0: Mitchie. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू।

एक रेड कलर की पोस्टल वैन सामने से जाती है। आप मुड़कर अपने बॉयफ्रेंड से पूछते हो, तुमने विश मांगी? तो वो कहता है हाँ। और तुम पूछते हो कि तुमने क्या मांगा? एंड ही टर्न्स अराउंड एंड सेज, तुम्हारे लिए दुआ मांगी। जब कोई आपसे ये कहता है ना कि तुम्हारे लिए दुआ मांगी, इट्स लाइक टेलिंग समबडी कि मैंने भगवान से तुम्हारे बारे में बात की और मैं बहुत ग्लैड हूँ दैट आई मेट यू, एंड अब मैं भगवान से कह रहा हूँ कि हमेशा तुम्हारा ध्यान रखे और तुम्हें हमेशा सेफ रखे। जब कोई ऐसी बात करता है, इट इज़ सच अ यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ लव। आप इसे पैसों से, गिफ्ट से, प्रेजेंट से, किसी भी चीज़ से तो तोल नहीं सकते हो, बिकॉज जब किसी ने आपके लिए दुआ मांग ली ना, तो दैट इज़ द हाइएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ लव मेरे हिसाब से। एंड आई एम सेइंग ऑल ऑफ दिस बिकॉज मैं एक इंटरव्यू रिविजिट कर रही थी रवि दुबे का, एंड ही सेड कि जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ, मैं हमेशा सरगुण के लिए सबसे पहले दुआ मांगता हूँ। लकीली दिस इज़ अ वेरी इंटीमेट कॉन्वर्सेशन ही एंड आई हैड ऑन द शो। और रवि की तरह अगर आप भी एक ऐसे इंसान हो जिसके लिए आपका प्यार सबसे ऊपर है, आपका लव ही आपका रब है, देन आई वॉन्ट टू नो योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी एंड टेल मी अबाउट इट। वाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RO CHIE। सो व्हाइल यू डू व्हाट यू आर सो गुड एट डूइंग, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: करनी थी।
1: की गल करनी है?
0: तेरे मेरे बारे
1: की।
0: यार बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
1: बचपन दी बात होर सी।
0: यार 10 साल हो गए।
1: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
0: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: मिर्ची, इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।
1: अकड़ी पकड़ी दिक्का दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्का दिक्कड़ी दिक्का दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कीरो दिक्कीरो दिक्कीरो
2: दिक्कीरो दिक्कीरो दिक्कीरो।

0: पार्टी ओवर गो।
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट, मिर्ची इट्स हॉट।

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi where we bring to you the hottest pop songs of the week. Hafte ke top 10 hottest pop gaane, usme ek nayi entry hai, hamara 90s 2000s ka indie pop classic, all this and more. To seedha shuruaat karte hain is hafte ki with Gaana number 10, Mika Singh the other rapper ka gaana, gaane ka naam hai Chori. Pichle hafte se apni position par barkarar, Chori is this week on Gaana number 10. Uske baad Mitta Roar ka Shisha, Mitta Roar ki composition, unhi ke lyrics, pichle हफ्ते से तीन पोजीशन नीचे ड्रॉप होके शीशा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: मिटर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये वो गाना है जो रिलीज पहले हुए, ट्रेंड बाद में हुए और फिर से रिलीज हुए।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: अक्सर कहा जाता है कि गानों की शेल्फ लाइफ होती है, लेकिन कुछ गाने उसके ऊपर होते हैं। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई बातें बतानी हो, कोई गाना शेयर करना हो, बिंदास आके हिट मी अप। आई रियली ट्रूली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। इनफैक्ट आई लव व्हेन यू रीच आउट टू मी एंड मुझसे पूछते हो कि यार कनिका, वो गाना नंबर 6 जो सुना था उसका नाम याद नहीं है, वापस बताओगे क्या, या आपने वो वाले गाने की धुन सुनाई थी, मुझे फिर से याद करना है। आई लव टू बी दैट पर्सन जो आपको गाने सजेस्ट कर रही है। पर कुछ गाने ऐसे होते हैं, कुछ धुन ऐसी होती है, हम जब भी सुने, कहीं पे दूर कहीं कोई चला रहा है, वहीं धुन सुन के हमें पूरा गाना याद आ जाता है। पिछले हफ्ते मैंने आपको एक ऐसा ही म्यूजिक सुनाया था, आपको गेस करना था ये कौन से वाला गाना है। एक बार फिर से ध्यान से सुनो।

0: आई नो यू नो द राइट आंसर, साइट वाले को भी बताओ @RJ करेगा, बट जल्दी जल्दी मुझे आके बताओ। एक हिंट देती हूँ, इस गाने में दीपिका पादुकोण भी है। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाला जो गाना है इट्स अ नई नवेली एंट्री, हिमेश रेशमिया का नया गाना रजत नागपाल राणा सोतल के साथ। गाने का नाम है शराब। हमने पिछले हफ्ते अज्यूम किया था ये गाना डेब्यू करेगा एंड इट इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: Number 8.

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3
1: मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 7 7 7

0: मस्ती खोरी इज प्रो मैक्स इन दिस सॉन्ग. अदनान सामी की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, महिमा भारद्वाज के लिरिक्स. गाने का नाम है लिपस्टिक. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बात बतानी हो, जल्दी आके बताओ. मैं बुरा नहीं मानूंगी कि मैं दो बार बोल के आपको बोल दूंगी कि फॉलो करें, क्योंकि ये इंटरनेट ने ना हमारी टाइमलाइन ही खराब कर दी है. दो रील्स नहीं चलती, दो प्रोजेक्ट फेल हो गए. मैंने दो बार बोला, आपने नहीं सुना, मैं निराश होकर नहीं बैठ सकती कि जो होना था हो गया. अक्सर ऐसा होता है, हम जिनके साथ काम करते हैं, हमारे दोस्तों के साथ, खुद के साथ, एक पूरी दिन की मेहनत के बाद जब रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, we all feel like कि बस यार हो गया, अब कुछ और. And that's when I look for inspiration हमारी अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री में. Think about artists like हिमेश रेशमिया, अदनान सामी. उनके दो गाने हमने इस काउंटडाउन पर सुने हैं. सुनिधि चौहान जैसे आर्टिस्ट जो रेगुलरली अपने आप को रीब्रांड करते हैं, रीबिल्ड कर रहे हैं. ऑडियंस बदल गई, प्लेटफॉर्म्स बदल गए, म्यूजिक का अंदाज भी बदल गया, लेकिन इन्होंने अपनी जगह वही बना रखी है. एंड ऑनेस्टली दिस इज नॉट एट ऑल इजी. नए लिसनर्स को विन करना बिना अपनी आइडेंटिटी को लूज किए, अपने पुराने फैंस को साथ रखना बिना वही सेम चीज रिपीट करे, एंड द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज हर दिन इतने सालों के बाद भी इतना क्रिएटिवली एक्साइटेड रहना. ये ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज में हम इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, बट आई ट्रूली बिलीव कि जो लॉन्जिविटी वाली स्टोरीज होती है, यहाँ असली इंस्पिरेशन है. अदनान सामी के 2000s वाले गाने भी पसंद थे, एंड जो हमने सुना गाना लिपस्टिक वो भी बहुत पसंद है. काउंटडाउन के जो अगले वाले आर्टिस्ट है, ही इज किंग ऑफ रेलिवेंसी. वो अपने आप को कंटिन्यूअसली रीबिल्ड करते रहते हैं और नए फैंस को अपने साथ जोड़ते रहते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली दिलजीत दोसांझ. उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है डीलर. दिलजीत दोसांझ का गाना दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उसके बाद आदित्य रिखारी, रैवट और कुटले खां का गाना ए अजनबी. पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. ये दोनों गाने बैक टू बैक, दिलजीत दोसांझ का डीलर और नंबर 6, आदित्य रिखारी, रैवट और कुटले खां का ए अजनबी, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग और नंबर 5, बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: Number 6.

इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 4।

0: And the song we're going to feature this week is
1: Krishna ni begane baro Krishna ni begane.
0: Gaane ka naam hai Krishna by the one and only Colonial Cousins. This song is truly revolutionary. I don't think is gaane ko hum kisi bhi ek box ya era mein fit kar sakte hain. Ye gaana 1996 mein release hua tha, but if you think about it, it looks like aaj kisi studio se fresh produce hoke aaya hai. Colonial Cousins were definition of fusion. Ek taraf Hari Haran ji, who is classically trained ghazal singer, and dusri taraf Leslie Lewis, who's all about English rock and roll and pop. Dono ne saath mein milke banaya Colonial Cousins, jinki sound aaj भी रेवोल्यूशनरी है। 1996 में उनका डेब्यू एल्बम आया, जिसका पार्ट है ये गाना कृष्णा। इंडियनाइज भी है, वेस्टर्न भी है, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल भी, कुछ लोगों के लिए वीडियो फर्स्ट। बट दिस सॉन्ग कृष्णा, आई रिमेम्बर जब पहली बार मैंने सुना था तो मुझे लगा ये गाना डिवोशनल गाना है। मैं तब छोटी थी। गाने की ओपनिंग एक कर्नाटक कॉम्पोजिशन से होती है, पर धीरे धीरे जब गाना प्रोग्रेस होता है, देन यू विल रियलाइज दैट दिस सॉन्ग इज गोइंग इनटू लेयर्स एंड लेयर्स एंड इट्स टचिंग द टॉपिक ऑफ वायलेंस, ग्रीड, लोनलीनेस। और फिर वो लाइन आती है जो कहती है कम बैक एज Krishna, as Jesus, as Allah, as anyone. And this is where this song becomes extra special. What I absolutely love about Colonial Cousins is that unhone indie pop music ko sirf romance ya dance tak seemit nahi rakha. Unhone prove kiya that independent music thoughtful bhi ho sakta hai, spiritual bhi ho sakta hai, and yet mainstream audience se connect kar sakta hai. Humne radio sets ki volume badha lijiye. This is a song jisko sunke main tab bhi jawab dhoond rahi thi, aaj bhi jawab dhoond rahi hu. Colonial Cousins ka 1996 ka track. This is Krishna playing right next for you on our cassette classic this week. You are listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.

0: वो क्लीशे कहते हैं ना कि किसी गाने को सुन के वक्त थम गया है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई फील अबाउट दिस सॉन्ग. एब्सोल्युटली टाइमलेस मेलोडी, टाइमलेस ट्रैक. गाने का नाम है कृष्णा बाय कॉलोनियल कजन्स ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ. एंड 90s एंड 2000s का वो जो भी इंडी पॉप गाना है विच स्टिल मेक्स यू फील लाइक यार ये वाला गाना हिट्स होम, हमें आकर बताओ. मैं और अश्काय माई साउंड प्रोड्यूसर, हम दोनों आपकी रिक्वेस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं. एंड वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. Now back to the countdown. अगले वाले गाने की बारी है. It's an Anoop Jain song, उन्हीं की composition, a Coke Studio Bharat song. 18 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार. अर्ज किया है पिछले हफ्ते से एक position नीचे drop होके this week on Gaana number 3. You are listening to Gaana Indie Top 10. बद्दी का नाम है कनिका. Enjoy.
1: Number 3.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो वेयर वी ब्रिंग टू यू द हॉटेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री हो चुकी है। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, ए क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप। गाना नंबर 10 पर था मीका सिंह दैया द रैपर का छोरी। फिर मिट्टर और स्वरा वर्मा का शीशा ऑन गाना नंबर 9। गाना नंबर 8 पे नई नवेली एंट्री मारी है हिमेश रेशमिया के शराब ने। अदनान सामी का लिपस्टिक ऑन गाना नंबर 7। दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन गाना नंबर 6। उसके बाद आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का ए अजनबी ऑन गाना नंबर 5। दिलजीत दोसांझ सिया का गाना रांझा दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 3।
2: कायर जो थे वो शायर बने, अब क्या क्या करें ये इश्क में।
1: गाना इंडी टॉप 10 पर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बंजारे का गाना, गाने का नाम है बैरन, 9 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक येट अगेन 3 पोजीशंस ऊपर जंप करके करण औजला इक्की और बॉयफ्रेंड, 26 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बॉयफ्रेंड इज येट अगेन ऑन गाना नंबर 1। ये दोनों गाने बैक टू बैक, बैरन ऑन नंबर 2, बॉयफ्रेंड ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 2।

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: Aajkal everything in Bollywood is about the opening weekend. Songs, trailers, dialogues, even emotions. सब कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है कि फ्राइडे से संडे तक इंटरनेट पे नॉइज बने रहे, लेकिन उसके बाद इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट रिलीज। और इस रेस में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज खो दी है, रिपीट वैल्यू। वो गाने जो आदमी खुद ढूंढ के वापस सुनता था, वो फिल्म्स जिनके सीन्स लोग स्कूल और ऑफिस में रिपीट करते थे, वो डायलॉग्स जो कल्चर का हिस्सा बन जाते थे। आज कंटेंट ज्यादा है लेकिन कनेक्शन कम, लेकिन फिर भी हर हफ्ते इस ओवरलोड में कुछ आवाजें, कुछ फिल्म्स और कुछ मोमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जो याद दिलाते हैं कि बॉलीवुड अभी भी सरप्राइज कर सकता है। तो देन द मिर्ची टॉक 20 स्टार्ट्स राइट नाउ। मैं हूं सुरेन सुंदरम एंड सबसे पहले एक एल्बम जो इस पूरे साल की सबसे ब्रिलियंट एल्बम्स में से एक है। ना इसमें डांस ट्रैक्स मिलेंगे, ना फिलर सॉन्ग्स, ना वो गाने जिन्हें आप एक बार सुन के भूल जाए। इस एल्बम पे मेहनत गई है, चांद मेरा दिल, सचिन जिगर की मेहनत। एंड नंबर 20 पर है खासियत बाय राघव चैतन्य और जोनीता गांधी। खत्म होने के बाद भी फिर सुनने का मन ना करे तो मेरा नाम बदल देना।
3: नंबर 20।

नंबर 19 पे रूप दी रानी फ्रॉम पति पत्नी और वो दो। ऑनेस्टली मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूं कि गाना चार्ट्स पे स्लाइड करके 19 पे पहुंच गया है, चार स्पॉट्स नीचे। और शायद अगले हफ्ते ये गाना कंप्लीटली आउट भी हो जाए, क्योंकि कुछ गाने सिर्फ नॉस्टैल्जिया का कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं, सोल नहीं। आप उन्हें सुनते वक्त कॉन्स्टेंटली ओरिजिनल गाने को याद करते हैं, एंड फिर अचानक नंबर 18 पे एक ऐसा कोलैब एंट्री लेता है जो थियोरेटिकली एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, विशाल मिश्रा इन एन अनुराग कश्यप फिल्म कॉल्ड बंदर। और ये गाना क्यों मजा आ रहा है यार, क्या स्ट्रेंज हॉन्टिंग ट्रैक है ये, जब पूरी इंडस्ट्री एल्गोरिथम फ्रेंडली हुक्स, ढोल ड्रॉप, स्टेडियम कोरसेस के पीछे भाग रही है, दिस सॉन्ग जस्ट विस्पर्स, बस धीरे से अंदर पहुंच जाता है। नो लाउड पे ऑफ, नो स्क्रीमिंग हुक, बस माहौल, द एटमॉस्फेयर, वो लेट नाइट लोनलीनेस, वो अकेलापन। और विशाल मिश्रा की आवाज, बंदा गा नहीं रहा, बंदा अपने दिल को समझा रहा है, रोका था कब से, संभाला था कब से। द राइटिंग इटसेल्फ फील्स टायर्ड इन अ गुड वे, इट्स एग्जॉस्टेड, जैसे कोई आदमी खुद को कन्विंस करते करते हार गया हो। और प्रोडक्शन भी देखो, मिनिमल पर्कशन, एम्बिएंट सिंथ्स, टाइनी अकूस्टिक गिटार फ्रेजेस जो फ्लोट करते हैं जैसे ख्याल पूरे ना हो, अनफिनिश्ड थॉट्स। ये गाना परफॉर्म नहीं करता, हॉन्ट करता है। एंड सबसे स्मार्ट चॉइस, विशाल नेवर बेल्ट्स द लाइन क्यों मजा आ रहा है, वो उसे आहिस्ते कहता है, लाइक अ मैन एम्बैरस्ड दैट ही इज फॉलिंग इन लव अगेन। इट्स ब्यूटीफुल रिस्ट्रेंट, एंड इट शॉक्स मी कि अनुराग कश्यप के सिनेमा में ऐसा इमोशनली डैमेज रोमांस पिट हो सकता था। This is purely mood over melody, texture over trend. Gaana number 18 is hafte kyun maza aa raha hai from Bandar. Number 18.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi, it's hot. Sureen ke saath, only on Mirchi, it's hot. Number 10.

माशुका नंबर 10 पे इस हफ्ते फुल मेडिटेरेनियन केओस लेकर डेब्यू कर रहा है माशुका फ्रॉम कॉकटेल 2। शाहिद कपूर इज इन फुल चार्मिंग रोग मोड, कृति सैनन वो एफर्टलेस ग्लैमर एनर्जी लेके आ रही है एंड प्रीतम दा वंस अगेन प्रूविंग कि वो हुक बनाना भूले नहीं है। लेकिन इंटरनेट को ऑब्वियसली मेलोडी से ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी पसंद है। अब पूरा सोशल मीडिया इस बात पे लड़ रहा है कि माशुका सपोजिटली एक 32 साल पुराने 32 years ago इटालियन सॉन्ग से इंस्पायर्ड है।

0: और फिर वही ओल्ड कमेंट्स फिर निकल आए, प्रीतम हैज कॉपीड अगेन। देखिए मैं यहाँ प्रीतम दा की साइड पर हूँ। हाँ, उनका पास थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल, थोड़ा सा चेकर्ड रहा है, नोबडी इज डिनाइंग दैट, लेकिन ये सिचुएशन मुझे थोड़ी अलग लगती है। महमूद कोई रैंडम वोकलिस्ट नहीं है, बंदा ऑफिशियल कोलैबोरेटर है इस गाने पे। एंड भाई नाम महमूद है बट ही इज नॉट एन इंडियन, ही इज इटालियन। उसने खुद इटालियन पोर्शंस लिखे हैं और उन्हें परफॉर्म किए हैं, तो मुझे जेन्युइनली नहीं लगता कि ये चोरी वाला सिचुएशन है। और एक और बात, हर मेलोडी जो इंडियन कानों को कॉपीड लगती है ना, जरूरी नहीं है कि वो कॉपीड ही हो। What if that melodic phrasing is just culturally Italian? क्योंकि हम Indian listeners automatically assume कर लेते हैं कि unfamiliar melody मतलब lifted melody. And सच में internet को context से ज़्यादा outrage पसंद है. We know it. वैसे इस वक्त number 9 पे सैयारा का title track भी quietly अपना emotional empire build कर रहा है. लेकिन अब charts पे आ रहा है एक और धुरंधर का chapter. And unlike माशूका, ये गाना subtle नहीं बनना चाहता. This one walks in with pure vibe energy. Gaana number 8 is hafte. Main aur tu by Jasmine Sandlas from Dhurandhar, The Revenge.
1: Number 8.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. नंबर 5.

0: नंबर पांच पे इस वक्त प्योर बॉलीवुड रोमांस डिस्कोर्स को हाईजैक कर चुका है गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। हमजा और यालीना की लव स्टोरी का वो चैप्टर जहां एवरीथिंग स्टिल फील्स वार्म, इट फील्स सेफ, इट फील्स ब्यूटीफुल। अब तक बिट्रेल्स नहीं आया है, धोखा नहीं आया है, नो एस्पियनेज स्कार्स, बस दो लोग जो स्लोली एक दूसरे की दुनिया बन रहे हैं। एंड ऑनेस्टली धुरंधर ने लव को बहुत फिल्मी तरीके से नहीं, बहुत ह्यूमन तरीके से लिखा। दैट ऑकवर्ड सॉफ्टनेस, द इमोशनल डिपेंडेंस, द कंफर्ट, और फिल्म आगे बढ़ती है और प्यार शादी बन जाती है, फैमिली बन जाती है, एक बच्चा आ जाता है, अंटिल द ट्रूथ डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। कि हमजा सिर्फ एक पति नहीं था, वो एक इंडियन स्पाई जासूस था और उसे अपना वतन चूज करना पड़ा, इवन ओवर द पीपल ही लव्ड मोस्ट। लेकिन जो चीज कभी खत्म नहीं हुई वो था उसका इश्क। और शायद इसलिए धुरंधर 2 का एक गाना आखिरी इश्क मुझे एक हार्ट ब्रेक सॉन्ग नहीं लगता, ये मुझे क्लोजर लगता है। इफ गहरा हुआ वॉज द फर्स्ट हार्ट बीट, आखिरी इश्क इज द लास्ट ब्रेथ। मैं ना रहा तो क्या हुआ, तेरे पास है इश्क मेरा। यार क्या राइटिंग है। आदित्य धर ने सिर्फ स्पाई थ्रिलर नहीं बनाई, उन्होंने एक लव स्टोरी को एक प्रॉपर इमोशनल एंडिंग दी है। और इस वक्त टेक्निकली चार्ट्स पे अगला गाना तो है अक्षय कुमार की कमबैक फिल्म भूत बंगला का तू ही दिसदा, विच इज ऑन नंबर 4। लेकिन कुछ मोमेंट्स काउंटडाउन लॉजिक से बड़े होते हैं। एंड आज वी फिनिश हमजा और यालीना की लव स्टोरी प्रॉपरली। My pick of the week is from Dhurandhar 2, The Revenge, by the man of the moment, Jubin Nautiyal and Shashwat Sachdev. Yeh hai Aakhri Ishq.
1: Pick of the week. Man.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर थ्री

0: नंबर दो पे इस वक्त फुल मास हिस्टेरिया क्रिएट कर रहा है वाओ फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है। एंड ऑनेस्टली ये मेरे लिए जेन्युइनली सरप्राइजिंग है क्योंकि ये गाना एक महीना बिता चुका है लेकिन शायद फिल्म थिएटर्स में आते ही इसका बज और बड़ा हो गया है। और शायद उसका रीजन सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, इमोशन है। क्योंकि अगर आपने वरुण धवन का अपने डैड डेविड धवन के साथ वो इंटरव्यू देखा है देन यू नो दैट दिस इज डेविड सर्स लास्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर। यार क्या लेगेसी है इनकी, हीरो नंबर वन, कूली नंबर वन, राजा बाबू, पार्टनर, बीवी नंबर वन, मुझसे शादी करोगी, हिंदी सिनेमा की कॉमेडी डीएनए में परमानेंटली लिखी हुई फिल्म्स हैं ये, ऑल डायरेक्टेड बाय डेविड धवन। लेकिन उस इंटरव्यू में एक बहुत ही स्वीट मोमेंट था, एक बहुत ही ह्यूमन मोमेंट। वरुण अपने फादर को लिटरली कन्विंस कर रहे हैं कि अब रेस्ट कर लो, हॉलीडेज पे जाओ, लाइफ एंजॉय करो, लेकिन डेविड सर वो बस अंडा पाव की बात कर रहे हैं। स्टारडम के बाद भी सिंप्लिसिटी नहीं गई और शायद इसलिए उनकी फिल्म में वो वार्म्थ, वो मिडिल क्लास मैडनेस, वो ह्यूमन केओस हमें अब भी दिखता है।
1: See, Papa, what we want as children, if I can tell you, near people, yeah, or any child wants, yeah, is that if you have, आपने पैसा कमाया, नाम कमाया, शोहरत कमाया, तो आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप आराम करें। बट मेरे माँ बाप बहुत हाइपर है तो मुझे कोई एडवाइस दे सकते हैं उनको थोड़ा सा? आई कीप टेलिंग देम दैट रिलैक्स, आपको हॉलीडे जाना है, फर्स्ट क्लास की टिकट कर, आपको जहाँ जाना है मैं भेजने के लिए तैयार, आपको जो चाहिए दुनिया में मैं देने के लिए तैयार हूँ,
2: मुझको भीड़ में छोड़ दो।
1: इनको अंडा पाव ही खाना है, इनको
2: वही चाहिए। मैं बड़ा ही वही हुआ, मैं जब सांता क्रूज़ ईस्ट में रहता था रात को हम लोग सब वही अंडा पाव ही मिलता था रात को 12 बजे, ये वो जो चले गए उधर खा के आ गए, पर वो मजा अलग ही था ना। And a struggle, everyone has to do struggle, you know. ये बोलते हैं कि पहली शॉट में जो हिट फिल्म दे देता है ना तो उसकी आगे की लाइफ खराब हो जाती है।
0: हिट फिल्म पहले मिल जाए तो लाइफ खराब हो जाती है। Dude, what a line. David Sir, happy retirement. लेकिन अभी एपिसोड एंड हो रहा है उस फिल्म मेकर के साथ जिसके पास इस वक्त बॉलीवुड का हॉटेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स है, आदित्य धर और धुरंधर का अनस्टॉपेबल स्टॉर्म, नंबर वन फॉर अ 15th टाइम ऑन द मिर्ची टॉप 20 है जैस्मिन सैंडलर्स एंड मधुवंती बागची का शरारत, नंबर वन।

0: और बस इसी के साथ मिर्ची टॉप 20 का ये एपिसोड यही खत्म होता है। देखो हाइप थी, हार्ट ब्रेक भी था, नॉस्टैल्जिया भी था और थोड़ी सी अनकंफर्टेबल ऑनेस्टी भी थी। बॉलीवुड हर हफ्ते बदलता है लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती एंड दैट इज ग्रेट म्यूजिक जो इवेंचुअली अपना रास्ता बना ही लेता है। फिर मिलूंगा आपसे किसी और मोड पे। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।

इट्स हॉट मिर्ची, इट्स हॉट

सोनी मॉडल लगती मॉडल जैम च रेंदी छोटे मोटे लोग ना मिले नाले छोटी मोटी गड्डी च नहीं।

0: Candy.
1: Musical Doctors.
2: Radio Mirchi, it's hot.
3: Mirchi, it's hot.

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स एंड लेट्स टॉक अबाउट सम बॉलीवुड टी। अकॉर्डिंग टू मल्टीपल रिपोर्ट्स, आमिर खान मे बी गेटिंग मैरिड टू गौरी स्प्रैट ऑन 5th of July in a private ceremony at home. And the plot twist is there is apparently not going to be a giant filmy shaadi. There won't be a helicopter entry, no 27 dance performances, bas close family, close people, low key vibes hone wali hai. Mujhe lagta hai unki dono ex-wives bhi wahan par maujood hone wali hai. Reports also say they've been building a quiet life together for over a year now and they just want to make it official, which is pretty cute and efficient. Very unlike desi wedding spreadsheets, right? लेकिन ऑनेस्टली यार, देयर इज समथिंग कंफर्टिंग अबाउट दिस। बॉलीवुड ने हमें सिखाया था ड्रामेटिक रेन कन्फेशंस और रियल लाइफ में स्टेबल लाइफ, फैमिली का आसपास होना और एक परफेक्ट बनी हुई गर्मा गर्म चाय। इसके अलावा थोड़ी सी महंगाई कम हो जाए बस, और क्या चाहिए। एंड कैन वी अप्रिशिएट दैट लव स्टोरीज अपेरेंटली डोंट चेक कैलेंडर्स नाउ, समवेयर क्यूपिड इज गोइंग योर एज टाइमलाइन, ये सब क्या होता है यार। होल्ड माय बो एंड आरो, मैं बताता हूँ कि 60 इयर्स में प्यार कैसे करते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज ऑल बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स राइट नाउ, क्योंकि ऑफिशियली तो कोई स्टेटमेंट आया नहीं और मुझे भी ऑफिशियली उन्होंने बुलाया नहीं है, लेकिन एज थिंग्स विल अनफोल्ड आई विल कीप यू पोस्टेड। अभी फिलहाल जाकर मेरी पोस्ट चेक करो, मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: आज का वेदर ना मुझे टॉक्सिक काम और इमोशनली अनअवेलेबल लग रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में। ऑफ कोर्स यू गेस्ट इट राइट, मिर्ची मॉर्निंग्स पर अब टाइम है तापमान वातावरण इन सब की बातों का। राइट नाउ इट्स सिटिंग एट अ कूल 57 डिग्रीज फारेनहाइट एंड इट्स क्लियर, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट है अभी रुको, द विंड इज एक्चुअली मेकिंग इट फील लाइक 55 डिग्रीज फारेनहाइट, यानी कि थोड़ा सा ठंडा रहेगा माहौल। एंड द नेक्स्ट 24 आवर्स विल बी प्रेसिपिटेशन फ्री, यानी कि कोई बारिश नहीं गिरने वाली है, जस्ट लाइक द लास्ट 24 आवर्स। Clear skies will continue through tonight and into tomorrow morning. So if you've been waiting to wear that outfit without carrying an emergency umbrella, you may do so. Aaj ka temperature range dekh lete, low jayega 55 degrees Fahrenheit tak aur high jane wala 87 degrees Fahrenheit tak. तो सुबह स्वेटशर्ट का वेदर रहेगा, आफ्टरनून में सडनली हैदराबाद इन मे टाइप की फीलिंग आने वाली है। एंड क्विक रिमाइंडर, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, वेयर योर एसपीएफ 50++++ और साथ साथ में मिर्ची की वाइब्स बना कर रखो। एंड ऑफ कोर्स यू नो लेयर के प्लेयर बनना जरूरी है, बिकॉज मौसम ही कुछ ऐसा है कि ऊपर नीचे जाने वाला है तापमान। फिलहाल हम जाने वाले हैं सुनने मिर्चीदार बैंगर्स ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसला, मुझसे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और एक्स पर। अगर जुड़ना है तो मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPR। Yes, and WhatsApp पर अगर मुझे मैसेज करना है तो 9033 मिर्ची इज माई नंबर, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट मिर्ची।

मॉर्निंग, मैं मिर्ची फैम, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड वेलकम टू मिर्ची आवर का 3-4 दिस आवर। सबसे पहले, इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी इज सेट टू बिकम इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑन जून 10th बाय क्रॉसिंग 4,399 कंसेक्यूटिव डेज इन ऑफिस, मूविंग पास द रिकॉर्ड हेल्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। नवट्यू पर अ पॉलिटिकल आउटफिट इन इंडिया कॉल्ड कॉकरोच जनता पार्टी अनाउंस्ड इट्स स्पोक्सपर्सन लाइनअप, इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट सौरभ दास, रिसर्चर एंड फिल्म मेकर विजेता दाहिया एंड आशुतोष रांगा एंड IIT कानपुर अलुमनस। They've also announced a protest later this week. And number 3 per actor Anushka Sharma shared that homeopathy played an important role in her life after reposting a video by a physician. And social media did what social media does best. Immediately turned it into a full discussion. Some people supported personal experiences, others raised concerns about relying on alternative approaches instead of evidence-based medical care for serious conditions. And that's it for Mirchi Hour ka 3 with me Priscilla on Mirchi Mornings. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Let's go crazy.

गुड मॉर्निंग माय मिर्ची फैम, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, ये है मिर्ची मॉर्निंग। सो हियर्स व्हाट मेकिंग फिल्मी वेव्स, द प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया हैज इशूड अ स्टेटमेंट आफ्टर रिपोर्ट्स अराउंड रणवीर सिंह एग्जिट फ्रॉम डॉन 3 एंड अक्षय खन्ना एग्जिट फ्रॉम दृश्यम 3। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, कंप्लेंट्स वर रिसीव्ड फ्रॉम प्रोडक्शन हाउसेज इन्वॉल्व्ड एंड द गिल्ड सेड एग्जिस्ट एट द 11th आवर कैन अफेक्ट ट्रस्ट एंड प्रोफेशनलिज्म इन द इंडस्ट्री। नाउ बिफोर एनीवन स्टार्ट्स ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक, no villain edit here. We don't know the full story behind individual decisions and schedules and creative choices and timing in films can get, let's say, more complicated than explaining to relatives why you still rent. But interesting thought ye hai ki Bollywood may run on talent and calendars. Also, can we appreciate that the 11th hour sounds so intense? One thing's for sure, fans are now officially in detective mode waiting to see what happens next with these two films. Tell me, are you team lock the cast early or team protect the plot and peace? Let me know. Mirchi Pris mera insta handle hai, twitter handle hai, fatafat se wahan par jaakar mujhe apni latest gossip de sakte ho ya apne jawab bhej sakte ho, aur whatsapp par agar connect karna hai to 9033 mirchi is my number, that's 9033647244. Well, all mirchi dar gaane enjoy karne ka time aa chuka hai, stay tuned and stay hot.

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स एंड टुडे इज 4th of June एंड इफ इट्स योर बर्थडे फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे टू यू. आज का दिन ऑफिशियली बिलोंग्स टू यू. परमिशन ग्रांटेड टू इग्नोर कैलोरीज, आंसर मैसेजेस लेट एंड ड्रामेटिकली से इट्स माय बर्थडे वीक. टाटा. एंड नाउ हु यू शेयर योर बर्थडे विद? देयर इज एंजेलिना जोली, एक्ट्रेस, फिल्म मेकर, ह्यूमैनिटेरियन, बेसिकली इन्हें कौन नहीं जानता है. एंड देन वी हैव गॉट रसल ब्रांड, कॉमेडियन actor and proof that some people are born with extra talking speed. And from our desi side we have Priyamani, powerhouse performer across Tamil, Telugu, Malayalam and Hindi cinema. Also in today's celebrity birthday buffet, model and TV host Bara Feli, actor Noah Wyle from ER, legendary voice and screen actor Keith David, साथ साथ में Scott Wolf and comedian Horatio Sanz. So, अगर आज तुम्हारा भी हैप्पी वाला बर्थडे है, स्टेटिस्टिकली इम्पॉसिबल टू प्रूव बट स्पिरिचुअली एक्यूरेट टू से यू आर प्रिटी ऑसम. सो आज तुम्हारा बर्थडे असाइनमेंट ये है कि ढेर सारा खाओ पियो, ऐश करो, कॉल पीपल यू लव, कॉल पीपल हु लव यू, एंजॉय द डे एंड हैव अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. और इसी तरह पूरे साल भर के दिन भी बिताने हैं. ऑलराइट, अभी फिलहाल जल्दी से लगाती हूँ मैं तुम्हारे लिए मिर्ची दार बैंगर्स और तुम मुझे फॉलो करो जाकर मिर्ची प्रिंस. इज माई हैंडल नेम MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033647224. स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.

0: सुन रहे तो मिर्ची मॉर्निंग्स, मेरा नाम है प्रिसिला और अब हम पता करने वाले हैं गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट।
1: राज ज्वेल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,500 पर ट्राई आउंस। अगर पर ग्राम की बात की जाए तो $144 $144 पर ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का 1 ग्राम का प्राइस है। ताकि आप गोल्ड के प्राइस कंपेयर कर सके इंडिया से, जी हाँ, $140 पर ग्राम, $1,440 पर तोला सोने का प्राइस है अमेरिका में। आप खुद कंपेयर कर लीजिए, इंडिया से गोल्ड के प्राइसेस अमेरिका में सस्ते हैं। तो आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में, चाहे पैम सर्टिफाइड बार्स हो, गोल्ड और सिल्वर अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट एट राज ज्वेल्स। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
0: ऑलराइट, गोल्ड एंड सिल्वर का रेट तो पता चल गया, बट क्या तुम्हें पता है मुझसे कनेक्ट करने का तरीका? मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

माइंडेड। अरे मेरी जैसे डांस।

0: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिस्सिला तुम्हारे साथ में. वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स, जहाँ पर अब राशि जोन आ चुका है.
1: मिर्ची राशि जोन.
0: एरीज यानी मेष राशि, आज स्टबन मत बनो यार. यूनिवर्स इज सेइंग अपडेट अवेलेबल, प्लीज डोंट क्लिक रिमाइंड मी लेटर. लेट गो ऑफ ऑल हैबिट्स एंड रिन्यू योरसेल्फ. लकी कलर इज इलेक्ट्रिक कोरल, लकी नंबर इज 19. टॉरस यानी वृषभ राशि, टुडे इज नॉट टीम विन और टीम लूज, इट्स टीम सबको चाय मिलेगी. कोलैबोरेशन ओवर कंपटीशन. लकी कलर इज पिस्टाशियो ग्रीन, लकी नंबर इज 24. जेमिनी यानी मिथुन राशि, इफ समवन ट्विस्ट्स योर वर्ड्स टुडे पोलाइटली बट फर्मली बिकम योर ओन पीआर मैनेजर. क्लैरिफाई, डोंट कलेक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स लाइक लॉयल्टी पॉइंट्स. लकी कलर इज सिल्वर मिस्ट, लकी नंबर इज 11. कैंसर यानी कर्क राशि, ऊप्स मोमेंट हैपन, इफ यू मेड अ मिस्टेक ओन इट, फिक्स इट एंड मूव ऑन. यूर ह्यूमन नॉट अ सॉफ्टवेयर अपडेट. लकी कलर इज ओशन ब्लू, लकी नंबर इज 27. लियो यानी कि सिंह राशि, डोंट पैनिक बिफोर द प्लॉट ट्विस्ट, थिंग्स आर नॉट कोलैप्सिंग, योर ब्रेन जस्ट ओपन अननेसेसरी टैब्स, कीप शोइंग अप. लकी कलर इज सैफ्रन गोल्ड, लकी नंबर इज 5. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्गो यानी कन्या राशि, प्लान्स चेंजिंग लास्ट मिनट, अनोइंग, यस, एंड ऑफ द वर्ल्ड, एब्सोल्युटली नॉट. Adapt karo, make the new plan look intentional. Lucky color is lavender grey, lucky number is 34. And that was your Rashi Zone part pehla. Agla part lekar aaungi thodi si der mein. तब तक तुम सुनो ये मिर्ची दार बैंगर्स ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, और जाकर मुझसे भी कनेक्ट कर लो सोशल मीडिया पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

हाय मिर्ची फैम, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स एंड जस्ट लाइक योर वीकेंड प्लान्स, आज का दिन खत्म हो चुका है. बट बिफोर आई लीव, एक लास्ट बॉलीवुड की टी तो देना बनता है. इब्राहिम अली खान की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो एक दरवाजे के पास खड़े हैं, फोन पर बात कर रहे हैं, एंड देन ही पुशेस समवन इनसाइड द डोर, एंड देन द कैमरा फॉलोज इनसाइड द डोर एंड वी फाइंड आउट दैट इट्स पलक तिवारी एंड अपेरेंटली दिस कपल इज रूमर्ड टू बी डेटिंग. लेकिन असली मुद्दा ये है कि ये वीडियो क्लिप देखने के बाद इंटरनेट पर काफी डिबेट छिड़ गया है, क्योंकि in the clip people online had very different reactions. Some felt Ibrahim's gesture looked rude, others thought he may have been trying to guide or protect her once paparazzi appeared. The conversation got even bigger after photographers reportedly continued following Palak inside the building, and a lot of people online started talking about celebrity privacy too. And honestly, classic internet hai yaar ye. Same video 50 opinions, unlimited confidence hai logon ka yaar aajkal, matlab har koi ट्रोल बना फिर रहा है. बट मे बी टूडेज रिमाइंडर इज दिस, शॉर्ट क्लिप्स डोंट ऑलवेज कम विद कॉन्टेक्स्ट एंड द कॉमेंट सेक्शन शुड नॉट बी प्रमोटेड टू सुप्रीम कोर्ट. बट वॉट एवर द रियल स्टोरी इज, विशिंग एवरीवन इन्वॉल्व मोर पर्सनल स्पेस एंड फ्यूअर अनसोलिसिटेड ज़ूम-इन्स, एंड दैट्स माय क्यू टू लीव यू एंड से बाय बाय फॉर टुडे. मिलेंगे तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस सेम फ्रीक्वेंसी. तब तक के लिए यू बी गुड, खाओ पियो ऐश करो, मजे करो, वीकेंड आ रहा है उसकी तैयारी करो और मेरा वेट करो. और अगर वेट ना हो पाए, मिस कर रहे हो मुझे, तो मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम इंस्टा और एक्स पर, एंड व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244. कमिंग अप मिर्ची दर बैंगर्स, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: आई जस्ट सॉ न्यूज अबाउट अ गर्ल जो कि ट्रेन के बाहर लटक कर रील्स बना रही थी.
1: सारा जमाना सारा का दीवाना.
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tuned in with me on Mirchi. और आप सोच रहे होंगे कि आखिर उस लड़की का हुआ क्या, बची कि नहीं बची? नहीं बची. वो अपनी मम्मी की पिटाई से नहीं बची. जब वो अंदर आई तो मम्मी ने पकड़ा और बस कोने में ले जाके दो चमार दिए. वेल, अगर मैं अपनी बात करूँ यानी कि हमारी जनरेशन की बात करूँ ना, तो हम वो जनरेशन है जो सिर्फ मम्मी की पिटाई से ही डर कर नहीं, बल्कि इस डर से भी कि अगर गिर गए तो क्या होगा. मतलब ये डर हमारे लिए इतना बड़ा हुआ करता था कि मम्मी की पिटाई तो बाद में आती थी, पहले हमें ये डर होता था कि यार दरवाजे के पास भी अगर खड़े हुए हैं ना चलती हुई ट्रेन के अंदर और दरवाजा अगर खुला हुआ है तो ऐसा लगता था जैसे दरवाजा हमें अपनी तरफ खींच लेगा और हम बाहर गिर जाएंगे. इतना फोबिया, मतलब ये सिर्फ फियर ही नहीं, ये फोबिया हुआ करता था. सो मच सो दैट आई स्टिल रिमेम्बर कि यार जब ट्रेन चलती हुई होती थी ना तो मैं टॉयलेट नहीं जा सकती थी. नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ट्रेन का वॉशरूम इस्तेमाल नहीं किया करती थी चलती हुई ट्रेन में, बिकॉज मुझे ये डर हुआ करता था कि वो जो टॉयलेट का होल है, वो जो खुड्डी है, मैं उसके अंदर गिर जाऊंगी. आज तो मैं ये सोच भी नहीं सकती यार, लेकिन उस टाइम पे लिटरली ऐसा फील होता था कि वो जो खुड्डी है ना वो मुझे अपनी तरफ खींच लेगी और मैं गिर जाऊंगी. बहुत ही वियर्ड डर है, लेकिन तब ये वियर्ड नहीं, डरावना हुआ करता था. और मम्मा ना मुझे जबरदस्ती ले जाती थी कि तुमने पूरे दिन वॉशरूम यूज नहीं किया है, चलो हल्के हो जाओ. गॉड, आज की जनरेशन के पास सिर्फ बाथरूम जाने के इतने इंटरेस्टिंग किस्से तो डेफिनेटली नहीं होंगे. हाँ, रील्स की इन्फॉर्मेशन सबके पास है. चलो जी, इसी के साथ चलते हैं 90s और अर्ली 2000 के दौर में, और इसी के साथ मिड्डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई मैं आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: अगर कोई पूछे कि मुझसे दोस्ती करोगे तो क्या जवाब होना चाहिए? सोचूंगी, देखूंगी, कल परसों कुछ कहूंगी।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। अभी क्या करूं यार, इतना फिल्मी पना है ना मेरी रगों में दौड़ रहा है, जो कि मुझसे ना डायलॉग्स भी फिल्म के ही निकलते हैं, अपने ऑथेंटिक डायलॉग्स नहीं निकल पाते हैं, सीन यही है। और अगर मुझसे दोस्ती करोगे मूवी के बारे में बात करी जाए ना, तो पता है क्या, इस फिल्म में जो ऋतिक रोशन वाला रोल है ना, राज वाला, वो एक्चुअली अभिषेक बच्चन का होने वाला था। और यही नहीं, रानी मुखर्जी भी इस फिल्म का पार्ट नहीं होने वाली थी, यानी कि पूजा का रोल वो नहीं, अमीषा पटेल प्ले करने वाली थी, जिन्होंने इस रोल को डिक्लाइन कर दिया। देखो ना किस्मत कैसी है, मतलब उस वक्त अभिषेक एंड रानी वर सपोज टू बी टुगेदर, मतलब गॉसिप्स थी, रूमर्स थे या रियलिटी थी, गॉड नोज। लेकिन किस्मत का खेल कुछ ऐसा हुआ कि अभिषेक हु वाज सपोज टू बी इन द फिल्म, वो नहीं आए, एंड रानी हु वाजंट सपोज टू बी इन द फिल्म, वो फिल्म में आ गई। एंड उदय चोपड़ा इस फिल्म का हिस्सा कैसे बने रहे? वेल ऑफ कोर्स, वायर इफ मूवी थी तो उदय चोपड़ा को तो होना ही था ना यार। देयर वाज अ टाइम जब बहुत कोशिश की वायर इफ ने कि किसी तरीके से उदय चोपड़ा जो है वो हिट हो जाए, कभी लीड तो कभी कैमियो, लेकिन कुछ भी नहीं चल पाया। ये भी किस्मत है बॉस, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है ना उसे वो मिल ही जाता है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मुझे दोस्ती करोगे, हालांकि ये फिल्म ज्यादा चल नहीं पाई, लेकिन ये फिल्म मुझे बहुत पसंद आई। और अब मुझे पता लगा है कि ये फिल्म ओरिजिनल आइडिया नहीं थी, इंस्पिरेशन थी किसी मूवी का।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, मुझसे दोस्ती करोगे was actually inspired by the Hollywood film The Truth About Cats and Dogs, जो कि 1996 की एक romantic comedy हुआ करती थी, जहां पर एक बंदी pretends to be another बंदी जब वो एक बंदे से बात कर रही होती है। But मुझसे दोस्ती करोगे का बाकी सारा जो पार्ट है ना, यानी कि करीना की एक्टिंग, रानी की स्वीटनेस, ऋतिक रोशन की एनर्जी और उदय चोपड़ा की नॉटीनेस, ये सब ओरिजिनल थी। मगर इस फिल्म की एक और बड़ी मजेदार बात यह है कि इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स हमने देखा और एंजॉय किया है, उस क्लाइमैक्स को एक बारी में हामी नहीं मिली थी। इस क्लाइमैक्स को पता नहीं कितनी बार रीराइट किया गया था, जस्ट सो दैट इसके अंदर वो बैलेंस आए जो कि एक सही बैलेंस हो ड्रामा और रोमांस का, और ये भी इंश्योर करता हो कि जो एंडिंग है ना वो हैप्पी भी हो और इमोशनल डेप्थ भी रहे इस एंडिंग के अंदर। ओए होए होए होए, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि केमिस्ट्री लैब में कोई फॉर्मूला की टेस्टिंग हो रही हो, और वही हुआ होगा इस फिल्म की एंड के साथ। लेकिन बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो अंत भला ही था, लेकिन यार इस फिल्म का अंत भला नहीं हो पाया, सैडली। हालांकि ये फिल्म मुझे बहुत पसंद आई, हाँ, क्योंकि ये वो दौर था जब मैं YRF Productions की कोई भी मूवी नहीं छोड़ा करती थी। फिल्मी लोग यू नो क्या कर सकते हैं। You tune in with me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: क्या आपको भी लगता है कि प्रियंका चोपड़ा ने अपना डेब्यू द हीरो अ लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई से किया है? इफ यस, देन लेट मी करेक्ट यू।
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, मिस वर्ल्ड बनने के बाद अगर हमने उनको स्क्रीन पर देखा है तो वो इस मूवी में ही नहीं बल्कि दलेर पाजी के एक एल्बम में भी था। पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, क्योंकि मुझे भी जब मैंने ये एल्बम देखा था तो क्लिक नहीं हुआ था कि ये बंदी जो इस एल्बम में दिखाई दे रही है दैट इज एक्चुअली प्रियंका चोपड़ा। कौन से एल्बम की बात कर रही हूँ मैं, तो सुनो ये गाना। छोटी सी मासूम सी शक्ल वाली प्रियंका चोपड़ा इस एल्बम में सिंपल येट बहुत ही प्यारी लग रही थी। एंड आई रियली लाइक द पिक्चराइजेशन ऑफ द सॉन्ग, जहाँ एक मिनी दलेर पाजी दिखाई देते हैं। व्हाट एन आयरनी, नाम दलेर है और उनका जो पिक्चराइजेशन में साइज है वो एकदम छोटू सा है। फैंटेसी, हाँ, कुछ भी कर सकती है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ईशान ने कहा तो है कि भूल जा, लेकिन ये बड़ी अजीब बात है यार कि हमारी ये जो याददाश्त है ना, ये बड़े अजीब तरीके से काम करती है। मतलब आपने नोटिस किया है, हमें आज ये याद नहीं होगा कि कल हमने डिनर में क्या खाया, लेकिन जब हार्ट ब्रेक की बात आती है ना, तो हमें हमारे एक्स का नाम 2 सालों तक रटा हुआ होता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। अजीब है, लेकिन पता नहीं कितना अजीब सा सच है हमारी लाइफ का, नहीं क्या?
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अब मेरे यारा, भूल जाओ ये एक्स वाई और जी को, अब बारी है मान ना मान करो गानों की पहचान की, जहां पर मैं आपके लिए दो गानों की धुनें जो हैं वो आपस में मिला के चला देती हूं और आपको गेस करना होता है कि ये दो गाने आखिर हैं कौन से। एंड आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि इन दोनों में से कोई एक भी गाना ऐसा ना हो जो आपको आपके एक्स की याद दिला दे। चलो जी, अभी सुनाती हूँ आपको वो दो गानों की धुनें। यो वी गो।

ओकी डोकी, मामला बस इतना ही कि अब आपको डीएम करना है ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा और बता देना है कि इन दो गानों के नाम क्या है. स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: यार जुर्म फिल्म का ये जो गाना है ना, ये मुझे epitome of love लगता है.
2: Mirchi, Tugs of Filmistan.

हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यारा, ये गाना ठग्स ऑफ फिल्मिस्तान में क्या कर रहा है। इसकी वजह यही है कि ये जो गाना है, इसकी धुन ओरिजिनल नहीं है। यस, एंड एक्चुअली ये जो गाना जो कि राजेश रोशन ने कंपोज किया है, हैज बीन कॉपीड फ्रॉम 500 miles, विच इज एन इंग्लिश सॉन्ग पीटर पॉल एंड मेरी की आवाज में। यकीन नहीं होता तो एक के बाद एक दोनों गानों की धुनें सुन लीजिए।

और अगर आपके पास भी ऐसे ही 90s या अर्ली 2000s की कोई फिल्म या किसी गाने की धुन के बारे में ऐसी कोई खबर है कि वो कहीं से कॉपी किया गया है, तो निश्चिंत मुझे DM करें ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। अभी के लिए अगला गाना आ रहा, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी के बारे में बिच कर रहे हो और आप जिसके बारे में बिच कर रहे हो आप उसी को वही मैसेज भेज दो? आपके साथ नहीं हुआ तो खैर कोई बात नहीं, मनीष मल्होत्रा के साथ ऐसा हुआ था एक जमाने में।
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And actually, scenario ये था कि मनीष मल्होत्रा मूवी दोस्ताना के लिए ड्रेसेस डिजाइन कर रहे थे और इसी मूवी में प्रियंका चोपड़ा और मनीष के बीच में थोड़ी नोकझोंक चलती रही रिगार्डिंग द कॉस्ट्यूम्स। अब वो क्या किस चीज को लेकर नोकझोंक थी वो नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन हाँ कॉस्ट्यूम्स को लेकर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा क्लैश चलता रहा। एंड देन फाइनली केम अ डे जो कि प्रियंका चोपड़ा का लास्ट शूटिंग वाला दिन था। और हुआ ये कि मनीष मल्होत्रा उसी दौरान करण जौहर से बात कर रहे थे एंड ही वाज एक्चुअली बिचिंग अबाउट प्रियंका चोपड़ा, जिस पर कि मनीष मल्होत्रा ने एक मैसेज टाइप किया ये लिखते हुए कि थैंक गॉड इट्स प्रियंकाज लास्ट डे, गुड रिडन्स, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा टाइप किया और भेज दिया, लेकिन करण जौहर को नहीं प्रियंका चोपड़ा को ही। आउच, जोर से लगा ना। वेल एक्चुअली मुझे नहीं पता कि ये प्रियंका चोपड़ा को कितनी जोर से लगा, लेकिन इसके बाद ऐसा कोई कैटफाइट जैसा सिनेरियो किसी ने नहीं सुना और शायद ऐसा सिनेरियो हुआ भी ना होगा। हो सकता है प्रियंका चोपड़ा ने इसको बड़े ही मैच्योरली लिया और इस चीज को हंसी में उड़ा दिया कि यार मनीष को मुझसे छुटकारा चाहिए या जो भी था। कुल मिलाकर बात इतनी है कि दोनों ने इस टॉपिक को बड़ी ही मैच्योरली हैंडल किया, वरना बात तो कब तक हम तक पहुंच चुकी होती। अब ये बताओ आपको ये बात कहीं किसी से पता लगी? ऑफ कोर्स नॉट, मैं हूं ना आपकी चलती फिरती बॉलीवुड मैगजीन, आपको ऐसी खबरें देती रहूंगी। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

खनी

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डियर ब्रिक वाले वीडियो गेम
2: यादों को चिट्ठी।
1: आज की इन कलरफुल स्क्रीन्स के बीच में ना तुम्हारी वो काली सी स्क्रीन बड़ी याद आती है, वो टेढ़े मेढ़े ब्लॉक्स और तुम्हारे वो बटन दबाने पर जो बीप बीप की आवाज आती थी आज भी कानों में गूंजती है। जब दुनिया के बच्चों के पास एक्सबॉक्स या प्लेस्टेशन नहीं थे ना, तब तुम ही थे हमारी जन्नत। स्कूल से लौटते ही ना हम ना किताब खोलते थे ना तो बैग उतारते थे, बस तुम्हें हाथ में ले लिया जाता था। लाइन क्लियर करने का जो सुकून मिलता था ना, वैसा तो आजकल गेमिंग में भी नहीं मिलता है। इनफैक्ट आजकल के गेमिंग सुकून के बजाय मोर ऑफ शोर एंड वायलेंस हो गए हैं। तुम्हारा टेट्रिस हो, कार रेस हो, टैंक फाइट या फिर वो स्नेक वाला गेम, हर एक मोड़ पर तुमने हमें जोड़े रखा। बैटरी निकाल निकाल के उल्टी करके लगाने का जुगाड़ और 99 in 1 लिखी हुई झूठी उम्मीदें, सब तुम्हारे साथ जुड़े हुए किस्से बन के रह गए। तुम्हारे बटन्स इतने चल चुके थे ना कि कई बार रोटेट वाला बटन दबाने पर लेफ्ट चल जाया करता था, पर फिर भी तुमसे प्यार कभी कम नहीं हुआ। तुमने घर में कितनी लड़ाइयाँ करवाई हैं, जब छोटे भाई बहन तुमसे गेम खेलना चाहते थे और हम कह देते थे बस ये लेवल पूरा होने दे उसके बाद ले लेना, तो बस फिर घमासान युद्ध हो जाया करता था घर में। आज जब मोबाइल की चमकती स्क्रीन पर गेम्स खेलते हैं ना, तो मन करता है कि फिर से तुम्हारी उस सादगी भरे मासूम और असली मजे वाली दुनिया में लौट जाया जाए। तुम्हारी यादों को सलाम करती तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची 'cause it's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: एसपी बाला सुब्रमण्यम अलका याग्निक की आवाज में फिल्म साजन से ये गाना इज कैसेट के साइड बी का चौथा गाना।
0: मिर्ची 90s कैसेट।
1: देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। वेल उस टाइम में तो एक्चुअली होता यही था कि पहली बार जब साजन की आंखों में प्यार दिखा करता था तो एक एक्साइटमेंट तो होता ही था, लेकिन सेलिब्रेशन ज्यादा होता था उस चीज का। और वही चीज जब गाने में तब्दील हो गई तो ये और बड़ा सेलिब्रेशन हो गया जो आज तक भी हमारी जिंदगी में मौजूद है। लेकिन बताए आज के टाइम पर मुझे ये गाना कहाँ एप्लीकेबल लगता है? ऑनलाइन डेटिंग के मामले में यार, जब आप किसी को ऑनलाइन ढूंढ लेते हो और आपको बातों ही बातों में लगता है कि दिस इज द वन, लेकिन मिले नहीं है तो कैसे कंफर्म कर सकते हैं? लेकिन जब फाइनली मिल जाते हैं, एक आध आपकी डेट के बाद आप जब उस इंसान से मिलते हो और आंखों ही आंखों में कन्वे करने लग जाते हो कि आपके दिल का मामला एक्चुअली अब गहरा चुका है और वहां से भी सेम सिग्नल आता है ना, तो ये गाना एप्लीकेबल हो जाता है कि देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। और कितनी सही बात है यार, डेटिंग ऐप से जब आप किसी से मिलते हो तो ये बात तो आती है आपके दिल में कि दिल भर तुझे मिलने को कब से था मैं बेकरार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। और फाइनली जब आप ऑफिस में तलाशते हो, पब्लिक प्लेसेस पे तलाशते हो, शादियों में तलाशते हो और आपको वो इंसान नहीं मिलता, फाइनली जब वो ऑनलाइन मिल ही जाता है तो फिर ये जो कुछ लाइन्स है ना, ये बड़ी एप्लीकेबल हो जाती है। जब हमारा दिल कह रहा होता है कि पल के झुकाऊं तुझे दिल में बसाऊं, अब बिन तेरे मैं तो कहीं चैन ना पाऊं, तू मेरा जिगर है, तू मेरी नजर है, तू मेरी आरजू, तू मेरा हमसफर है। ओए होए, चलो जाते जाते यही गाना आपके लिए लगाती हुई जा रही हूँ और आपसे कहती हूँ हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और मुझे ढूंढ लीजिएगा यहाँ के अलावा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।

आपको पता है 1989 की फिल्म परिंदा का गाना प्यार के मोड़ पे छोड़ोगे जो बाहें मेरी, ये परिंदा मूवी के डायरेक्टर वैसे विधु विनोद चोपड़ा थे, लेकिन ये पर्टिकुलर सॉन्ग वॉज शॉट बाय संजय लीला भंसाली जो उस टाइम विधु विनोद चोपड़ा को असिस्ट कर रहे थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एंड विधु विनोद चोपड़ा वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय संजय लीला भंसाली कि फिर उन्होंने अपनी अगली फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के जितने भी सॉन्ग्स थे उनको शूट करने की जिम्मेदारी संजय लीला भंसाली को दी और यहीं से शुरुआत हुई संजय लीला भंसाली के आइकॉनिक सॉन्ग शूट्स की। उसके बाद तो फिर वो देख दनादन सिक्सर मारते रहे, लेकिन उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं परिंदा फिल्म के गाने शूट करने से हुई। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ये गाना देखें तो ध्यान रखें दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ संजय लीला भंसाली। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: आपको पता है आनंद फिल्म जब बन रही थी तो डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने राइटर गुलजार साहब को एक बात बिल्कुल क्लियरली बताई थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। उन्होंने ये बताया था भाई कि फिल्म की शुरुआत में ही ऑडियंस को पता चल जाना चाहिए कि आनंद राजेश खन्ना साहब का किरदार जो है वो मर चुका है। सस्पेंस में नहीं रखना है कि ऑडियंस पूरी फिल्म में सोचती रहे कि ये जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे या क्या होगा। एंड आई थिंक दिस वर्क्ड ब्रिलियंटली फॉर दैट फिल्म, क्योंकि आपको पहले से पता है वो इंसान नहीं है और आप उसकी कहानी देख सुन रहे हो। एंड देन यू गेट टू नो कि ही वाज सो फुल ऑफ लाइफ, और आपको लगता है कि यार आपकी जो परेशानियां हैं फिर वो कितनी छोटी हैं। तो हम भी फुल ऑफ लाइफ हो सकते हैं, हर मोमेंट को जी सकते हैं जैसे आनंद जीता था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

आपको पता है अर्ली 80s में संजू बाबा, संजय दत्त और कपूर ब्रदर्स यानी कि रणधीर कपूर एंड स्पेसिफिकली ऋषि कपूर, इनका आपस में थोड़ा सा ऐसे झगड़ा हो गया था, खिटपिट हो गई थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और अक्सर बंदों के बीच में जब खिटपिट होती है तो क्या वजह होती है, बंदी वजह होती है, एंड दैट बंदी वॉज टीना मुनीम। सो उस टाइम पे संजय दत्त एंड टीना मुनीम वर डेटिंग, और उसी के साथ ये रूमर्स आए बिकॉज टीना मुनीम वॉज वर्किंग, हैड वर्क्ड विद ऋषि कपूर इन कर्ज मूवी, और रणधीर कपूर के साथ वो हरजाई नाम की मूवी में काम कर रही थी। तो ऐसे रूमर्स आए कि वो दोनों के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड हैं, समहाउ रणधीर कपूर के साथ भी और ऋषि कपूर के साथ भी, विच वॉज नॉट ट्रू। और इन रूमर्स ने संजय दत्त को बहुत अपसेट कर दिया और उनको ऐसा लगा कि ये रूमर्स कपूर ब्रदर्स ने फैलाए हैं, तो उनकी थोड़ी सी ऐसी खिटपिट हो गई। देन नीतू सिंह इंटरवीन्ड एंड उन्होंने ये सारा जो कन्फ्यूजन था ये सॉल्व किया, और फिर उसके बाद वो लोग अच्छे टर्म्स पे हो गए। होता रहता है, चलता रहता है, फिल्मी दुनिया है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची। मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

हाय वो टाइम जब हम फिल्म स्टार्स के अपने फेवरेट एक्टर्स एक्ट्रेसेस के पोस्टर्स अपने कमरों में लगाते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। अभी शायद एज अ स्क्रीन सेवर लगाते होंगे अपने फोन में उनकी फोटो। और क्योंकि एक टाइम पे पोस्टर्स बहुत पॉपुलर थे तो कयामत से कयामत तक फिल्म जब हिट हो रही थी ना, तो इसको प्रमोट करने के लिए बॉम्बे में एक प्रमोशन की गई कि अगर आप कयामत से कयामत तक के 8 से ज्यादा टिकट खरीदेंगे तो आपको आमिर खान और जूही चावला का पोस्टर मिलेगा फ्री फ्री फ्री। एंड गेस व्हाट, इट वर्क्ड। ऑलरेडी लोग फिल्म देखने आ रहे थे, पोस्टर के लालच में और आ गए, फिल्म और हिट हो गई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: It's hot.

आपको पता है 1973 की फिल्म लोफर, उसमें उफ धर्मेंद्र इतने हैंडसम लगते हैं भाई। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। पर धर्मेंद्र की सुंदरता मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि ये फिल्म वॉज अडेप्टेड फ्रॉम एन अमेरिकन फिल्म 1961 की पॉकेट फुल ऑफ मिरेकल्स, जो अगेन 1933 की एक फिल्म लेडी फॉर अ डे का रीमेक थी। इसी सब्जेक्ट पे 1989 में एक हांगकांग में फिल्म बनी थी मिरेकल्स नाम से, और इसी सब्जेक्ट पे 2008 में बॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी सिंगिस किंग। तो सोचिए फिल्मों का इतिहास मतलब कहां से कहां जाता है भाई। खैर हम प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं। लोफर फिल्म का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनते हैं, रिटन बाय आनंद बख्शी साहब, कंपोज्ड बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड सन बाय मोहम्मद रफी साहब। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

0: आपको पता है विनोद खन्ना साहब को कुछ प्रिंट मीडिया में सेक्सी सन्यासी भी कहा जाता था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, क्योंकि फिल्मों में एनीवे उनको बहुत हॉट बहुत गुड लुकिंग माना जाता था, जो कि वो थे। और अचानक से एट द पीक ऑफ हिज करियर 1978 में उन्होंने फिल्मों से अपना ब्रेक अनाउंस कर दिया और 1982 में वो स्पिरिचुअल गुरु ओशो के फॉलोअर बन के अमेरिका में उनके आश्रम में चले गए, जहां उन्होंने बहुत अलग अलग तरह का काम किया, माली का काम किया, रसोइये का काम किया। सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप एकदम बैठे रहो बस और ध्यान ही करते रहो 24 घंटे, ये तो कहा नहीं, तो काम भी देते थे करने के लिए, तो उसमें बहुत मजा आता था। और वो काम जो मैंने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किए, एक माली का काम, यू नो, एक रसोइये का काम। रसोइया तो खैर मैं कुकिंग वुकिंग में बहुत इंटरेस्ट लेता था पहले भी, फिर मैं इलेक्ट्रिशियन बना, प्लम्बर बना, मैंने हैवी मशीनरी चलाई, मैंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी चीज़ें मैंने की, तो इतने सारे एक्सपीरियंसेस हुए, कंस्ट्रक्शन वर्क किया मैंने, तो ये चीज़ें मैं कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाता अगर मैं उनके साथ मिलता।
0: सही है भाई, जीवन में हर तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए, भौतिकता, अध्यात्म, लड़ाई, झगड़ा, प्यार। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली ऑन

0: One of the finest actresses of Indian cinema, Nutan Ji. मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ. उनका फिल्मों में आना शौक था या इत्तेफाक था? एक बार एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था.
1: ना इत्तेफाक था ना शौक था, मुझे लगता है एक क्योंकि मेरे माता पिता दोनों ही फिल्मों में थे. मेरे डायरेक्टर थे मेरे पिताजी और मेरी माता जी उस जमाने की फिल्म स्टार थी, तो एक नेचुरल चीज. मेरी पहली फिल्म थी हमारी बेटी और उसकी शूटिंग शुरू हुई थी लेट 1949 अर्ली 50 में.
0: अच्छा, इस टाइम ना नूतन जी अपने लुक्स को लेकर बहुत कॉन्शियस थी क्योंकि वो बहुत स्लिम थी और आग में घी डालने का काम करते थे रिश्तेदार कि हाय कितनी पतली लड़की है, इसको कुछ खिलाओ पिलाओ. लेकिन इनकी जो शुरुआती फिल्में आई ना उनमें इनके काम की बहुत तारीफ हुई. फिर वही रिश्तेदारों के स्टेटमेंट्स बदल गए कि क्या टैलेंटेड लड़की है हमारी, पतली है तो क्या हुआ. अच्छा, इसी दौरान ना नूतन जी को स्विट्जरलैंड भेजा गया एक फिनिशिंग स्कूल में, जहाँ से वो और भी ग्रूम्ड कॉन्फिडेंट होकर लौटी. मैं भी वापस आती हूँ थोड़ी देर के बाद, राइट हियर पुरानी जीन्स पर. मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची.
2: सावन का महीना पवन करे सोर,

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची के साथ।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

0: नूतन जी जितनी कमाल की एक्ट्रेस थी उनको म्यूजिक का भी उतना ही शौक था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इनफैक्ट उन्होंने अपनी एक फिल्म छबीली में खुद का गाना प्लेबैक भी किया था, लेकिन फिर ये आगे कंटिन्यू नहीं किया। सुनिए इस बारे में बहुत पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: मैंने बचपन से, जब मैं 2.5-3 साल की थी, तब से मैंने क्लासिकल गाना सीखा। 14-15 साल मैंने गाना सीखा पंडित जगन्नाथ प्रसाद से, और वो तो मेरा रियाज जारी रहा, लेकिन मैंने उसको इतना फिल्मों में मैंने कंटिन्यू नहीं किया। फिल्म बनाने में एक संगीत की दुनिया और होती है और अदाकारी की दुनिया और होती है, और चूंकि मैं ऑलरेडी एक कामयाब अभिनेत्री रही थी उस वक्त भी, क्योंकि छबीली जब बनी थी उस वक्त मेरी सुजाता भी बन चुकी थी, मेरे 2 ऑलरेडी अवार्ड्स दे थे मुझे, तो उसके बाद मैं ये इंसिस्ट नहीं करना चाहती थी कि भाई मैं खुद ही अपने गाने गाऊंगी, क्योंकि उसमें एक डर था कि अगर मैं ये इंसिस्ट करती तो शायद मैं अच्छे अच्छे रोल्स गंवा देती।
0: ये भी ठीक है। वैसे अगर आप पेइंग गेस्ट मूवी देखें ना, तो उसमें एक सीन है जहाँ पर एक डिबेट पोयम कंपटीशन टाइप का है, तो वहाँ पे जो भी गाया है ना नूतन जी ने, वो उनकी खुद की आवाज है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: अमोरे मियो तोवे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

Mirchi, it's hot. पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा। चाहे जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा।
1: कभी कभी मुझे बड़ी हैरानी होती है कि 80s से पहले नूतन जी और दिलीप कुमार साहब की कोई फिल्म साथ में नहीं आई। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। क्यों नहीं आई, इस बारे में एक इंटरव्यू में सुनिए नूतन जी ने क्या शेयर किया था।
2: आई तो नहीं, लेकिन हमने एक फिल्म इकट्ठे बनाई थी जो अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से रिलीज नहीं हो पाई। उस फिल्म का नाम था शिकवा, बहुत पहले बनी थी 1951-52 में।
1: इसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया था कि उनके फेवरेट को स्टार्स कौन थे।
2: एक तो बलराज जी थे और दूसरे अशोक कुमार जी और राज कपूर जी। राज कपूर जी क्योंकि वो खुद डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो उनको एक फिल्म मेकिंग का बहुत ही नॉलेज है, और एज एन आर्टिस्ट वो दूसरे आर्टिस्ट की कदर बहुत करते हैं, तो उनके साथ भी बहुत अच्छा लगता है काम करते हुए। और एज एन आर्टिस्ट भी और एज ए हीरो भी मुझे अमिताभ जी बहुत पसंद है।
1: वैसे बच्चन साहब के साथ उनकी एक जो फिल्म आई थी उसे ना हमारे घर में गुड़ वाली फिल्म बोला जाता है। उस फिल्म में गुड़ बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, रिश्ते बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। सौदागर फिल्म पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।
1: It's hot. Purani jeans. With Charu. Only on

0: एक पुराने इंटरव्यू में ना नूतन जी से थोड़ा ट्रिकी थोड़ा बोल्ड सा क्वेश्चन पूछा गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। बड़ा सटली पूछा गया था कि अक्सर फिल्मों में रोमांटिक सीन करते हुए रील वाली फीलिंग का रियल वाली फीलिंग में बदलने का खतरा रहता है। इस पर सुनिए नूतन जी ने क्या कहा था।
1: क्या है कि हम जब काम करते हैं तो एक स्विच ऑन और स्विच ऑफ चीज हो जाती है। उस वक्त के लिए हम डायलॉग याद करते हैं और उस वक्त के लिए वो हम एक्टिंग करते हैं। उसके बाद जो भी हमारे पर्सनल रिश्ते नाते हैं वो बिल्कुल वैसे के वैसे रह जाते हैं जो हमेशा थे पहले की तरह।
0: वेरी स्मार्ट आंसर। और किन किन एक्टर्स के साथ उनकी जोड़ी पॉपुलर रही इसके बारे में सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
1: देव साहब, देवानंद जी, मेरी पिक्चरें बहुत सी बनी थी, लगातार बनती गई। जब हमारी जोड़ी क्लिक हो गई तो बहुत से प्रोड्यूसरों ने और देव साहब ने खुद भी अपने पिक्चरों में हम दोनों को ही लिया था। तेरे घर के सामने, पेइंग गेस्ट, बहुत सी और पिक्चरें थी, मंजिल। उसके बाद राज जी के साथ, राज कपूर जी के साथ अनाड़ी बनी, छलिया बनी, और उसके बाद बनी सुनील दत्त जी के साथ। तो एक जमाना आ जाता है जैसे एक पैर क्लिक कर जाता है।
0: सही है, इसी बात पे ब्रेक ले लेते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: नूतन जी, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस एवर। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। नूतन जी जिस तरह से इमोट करती थी ना, यू जस्ट कांट टेक आईज ऑफ हर फेस। और एक बार एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि कोई भी कैरेक्टर प्ले करने से पहले क्या उनके मन में चलता है, कैसे वो तैयारी करती हैं।
1: देखिए, जब मैं भूमिका करती हूँ तो मैं अपने आप को बिल्कुल भूल जाती हूँ। जो कैरेक्टर मैं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल उसमें खो जाती हूँ। और मैं ये यानी यकीन करना चाहती हूँ कि वो लड़की जो मैं कर रही हूँ वो मैं खुद हूँ। जो भी उसके साथ अच्छा बुरा हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है, उस कैरेक्टर के साथ हो रहा है। और उसके मुताबिक मेरा ख्याल है वो जो एक्टिंग होती है वो अपने आप खुद ब खुद आ जाती है।
0: और उनकी सभी आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस में से उनकी फेवरेट कौन सी रही?
1: देखिए, मुझे वो रोल करने में बहुत ही अच्छा लगा, वो था रोल बंदिनी का। क्योंकि वो रोल बहुत मेरे हिसाब से उसमें वेरिएशंस बहुत थी, कुछ हद तक डिफिकल्ट भी था। और अलग अलग उसमें सारे यानी कि अलग अलग उसमें ढंग थे, अलग अलग उसमें एक्सप्रेशंस थे, अलग अलग फीलिंग्स थी।
0: वैसे ये फिल्म देख के ना मैं थोड़ी सी डिसहार्टन हो गई थी। इतने हैंडसम धर्मेंद्र के प्रपोजल को नूतन जी ने ठुकरा दिया था तब समझ नहीं थी ना कि क्या मीनिंग था उस फिल्म का। खैर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: करो।
1: भाई नूतन जी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो एक पुराने इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में उनके प्रोफेशन की वजह से उनको दिक्कत नहीं आती।
2: आती तो है, लेकिन उसमें मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटे का भी बहुत साथ है, क्योंकि वो दोनों ही बहुत अंडरस्टैंडिंग है। वो जानते हैं कि भाई ये बहुत बिजी हैं, तो वो ज्यादा डिमांड नहीं करते।
1: और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी एक वजह थी कि नूतन जी कभी थोक के भाव ऐसी फिल्में नहीं करती थी, गिनी चुनी फिल्में करती थी।
2: मैंने कभी भी पूरे मेरे करियर में 5 या 6 से ज्यादा पिक्चरें इकट्ठे कभी नहीं ली। मुझे अपने हॉलीडेज भी मिल जाते हैं और अपने परिवार के साथ भी।
1: और फिल्मों में काम करने के अलावा और क्या करना उनको अच्छा लगता था?
2: इन कामों की वजह से मुझे वैसे दूसरा कोई काम करने को वक्त ही नहीं मिलता, टू टेल यू द ट्रूथ। वैसे घर बार है, सब लोग परिवार हैं, सब बहुत खुश हैं, तो उसमें ही काफ़ी, यानी कि मैंने कहा जैसे मैं हॉलीडेज लेती हूँ तो अपने परिवार के साथ काफी दिन गुजार सकती हूँ।
1: वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है लाइफ में। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। ओपनिंग डे की कमाई 7 से 8 करोड़ प्रेडिक्ट की गई है फॉर दिस अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म है जवानी तो इश्क होना है, जो डेविड धवन की शायद से लास्ट डायरेक्टोरियल भी होने वाली है। स्टारिंग वरुण धवन, मृणाल ठाकुर एंड पूजा हेगड़े, ये फिल्म 5 जून को रिलीज होने वाली है। और ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो उनके हिसाब से ये फिल्म डबल डिजिट ओपनिंग तो नहीं, बट 7 से 8 करोड़ की ओपनिंग जरूर कर सकती है। डिस्प्यूट अब लीगल फेज में जा चुका है। मैं बात कर रही हूँ रणवीर सिंह एंड फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज यानी FYCE के डिस्प्यूट की, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स रणवीर ने अब फिल्म वर्कर्स बॉडी को लीगल नोटिस भेजा है आफ्टर इट इशूड अ नॉन कोऑपरेटिव डायरेक्टिव अगेंस्ट हिम इन कनेक्शन विद हिज एग्जिट फ्रॉम Dawn 3। और अब स्पेकुलेशंस हैं कि शायद से FYCE जो है वो अपना ये नॉन कोऑपरेटिव डायरेक्टिव रणवीर सिंह के ऊपर से हटा ले। कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म भारत भाग्य विधाता की बात करना चाहती हूँ, जिसका ट्रेलर लॉन्च मुंबई में किया गया। मूवी 12 जून को रिलीज होने वाली है, जिसको डायरेक्ट किया है मनोज तपाड़िया ने। सो बेसिकली इस फिल्म का नाम पहले नर्स ऑफ कामा रखा जा रहा था, बट जब इसकी कहानी पढ़ी गई, सुनी गई, तो फिर लोगों को रियलाइज हुआ कि इसमें इंडिया का एसेंस काफी एक्सट्रीम है, एंड दस भारत भाग्य विधाता वॉज द नेम डिसाइडेड। बट ये टाइटल जॉन एब्राहम के पास था। जॉन ने बिना किसी पैसे के या बिना किसी हिंड्रेंस के ये टाइटल इस फिल्म के मेकर्स को दे दिया। बाकी पिछले कुछ टाइम से कंगना रनौत की जो फिल्में बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस दिखा रही हैं, उसके हिसाब से होप्स हाई तो नहीं है, बट आई जस्ट विश कि लोग एटलीस्ट फिल्म देखने के बाद कोई डिसीजन बनाए। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।
1: Radio Mirchi, it's hot. Mirchi.